जटा भस्म लेपन किया, कहां गुफा मैं बास, मन जीते जग जीतिया, जाते बिख्या ते होए उदास। अंजन दे सबै कोई, टुक चाहन माहे बिढान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोइन परवान, कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए, अंतरगत हर पे

मैं बोलत ही बड़लाज राम जे पाया राम ते पवन बार बार रहाओ झूठा जग डहके कना दिन दुए बर्तन की आस राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास गुर प्रसाद जे बूझे आया सा ते भया निरास सब सच नदरी आया जो आतम भया उदास राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुंदर है पार उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे जीवत मरो मरो फिर जीवो जीवत मरो मरो फुन जीवो पुनरप जन्म ना होई कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिख सोई जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो एक अनेक हो रहो सगल मैं अब कैसे परमावो राम मोको तार कहां ले जई है सो दो मुक्त कहां देव कैसी कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ तारन तरन तवे लग कही है जब लग तत न जानिया अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन काहे की जित है मन पावन जब जब आए केस ते पकड़ तै हर को नाम छावन रहाओ काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना नैनू नगटू श्रवनु रसपत इंद्री कया नमाना बाबा अब ना बसो ए गाओ करी करी का लेखा मांगे काहित चेतु नाओ रहाओ धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी पंच किरसान वा पा गए ले बांधे ओ जियो दरबारी कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद अन पाओ

हर पाखंड ना की जाई बैरागी अड़े ए पाखंड रता सब लोक बना हम बै तृष्णा पासना छोड़ ही बैरागी अड़े ममता जालिया पिंड बना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए वना हम बै सतगुर बिन बैराग ना हो वही बैरागी अड़े जे लोचे सब कोए वना हम बै कर्म होवे सतगुर मिलै बैरागी अड़े सहजे पावे सोए वना हम बै कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े मोको भौजल पार उतार वना हम बै राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो पाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे पावे रहाओ हस्ती देख परम ते पूला श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया खीर समानो साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी कबीर को ठाकर अंध बिनोदी जातना का

खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लरा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरा कबहू ना छड खेत। कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। चार मुक्त चार सिद्ध मिलके दूल्हे प्रभ की शरण परयो, मुक्त पयो चौहू जुग जान्यो जस कीर्त माथे शतर तरयो। राजा राम जबत को ना तरयो, गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगता को नाम परयो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक बराइत देख प्रताप जम डरयो, निरपो पय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिरयो। अम्बरीको दियो अपह पद राज पीखन अध करयो, नौनिध ठाकर दई सुदामै त्रु अटल अजहू न टरयो। भगत हेत मारियो हरनाक्ष नर सिंह रूप होय देह धरयो, नामा कह भगत बस केसव अजहू बल के द्वार खरो। मारू कबीर जियो दीन बिसारियो रे दीवाने, दीन बिसारियो रे पेट भरयो पशुआ ज्यों सोयो, मनुख जन्म है हारयो रहाओ। साध संगत कबहू नहीं कीनी रचियो तंदे झूठ, स्वान सूकर बाय सजे वह पटकत चालियो ऊठ। आपस कहो धीर

नहीं, अंधले क्या पाया जग आए, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चले मूल गवाए रहाओ। जेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु पहे कदे होहे नानी के। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मिलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। अनको दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। पहरो महला पहला, सगली रैन सोबत गलफाही, दिन से जंजाल गवाया, खिन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन एहो जगत उपाया। मन रे क्यों छूट से दुख पारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी रहाओ। ऊं दो कवल मन मुख मत होची, मन अंधे सिर धंधा, काल बिकाल सदा सिर तेरे, बिन्ना मैं गलफंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंधलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान में होने, शब्द विचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने। पहरो महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती, राम रसन रंग राता, अवर न जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता। सोजन ऐसा मैं मन पावे, आप मारे परम प्रदाता, गुर की कार कमावे रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरखिया देसो, घट घट अंतर सर्ब निरंतर, रव रहया सच वेसो। साच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल नाराई, निर्मल नाम अमृत रस चाखिया, शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी में लाह पावस, गुरमुख नाम वडाई, सगले दुख मिटै गुर सेवा, नानक नाम सखाई। पैरो महला पहला, हृदय नाम सर्व तन धारण, गुर प्रसादी पाई है, अमर पदार्थ ते कृतार्थ, सह ध्यान लिवलाई है। मन रे राम भगत चित लाई है, गुरमुख राम नाम जप हृदय, सह सेती कर जाई है रहाओ। परम भेद पौ कबो ना छूटस, आवत जात ना जानी, बिन हर नाम को मुक्त ना पावस, डूब मोए बिन पानी। धंधा कर तो सगली पत खोबस, परम ना मिटस गवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंत पसारा। अकुल निरंजन स्यो मन मानिया, मन ही ते मन मुआ, अंतर बाहर एको जानिया, नानक अवर ना दुआ। पहरो महला पहला, जगन होम पुनता पूजा, देह दुखी ने दुख सह, राम नाम बिन मुक्त ना पावस, मुक्त नाम गुरमुख लह। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोली बोले, बिन नामे नेफल मर भ्रम ना रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे, संध्या कर्म ते काल करे, बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। डांड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे, राम नाम बिन सांत न आवे, जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वस्त्र छोड़ तन नग्न पया, राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत कै बांधे पेख पया। जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कतर तू सर्ब जिया, गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया। राग पहरो महला तीजा, चौप दे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्भ ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ ना कर मूर्ख गावारा, इस गर्भ ते चल।

बिंदते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांड है कड़ै कुमारा। पंच तत् मिल देही काया कारा, घट वध को करै बिचारा। कहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई। पैरव महला तीजा। जोगी गृही पंडित भेख तारी, ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोए, जागत रह ना मूसै कोए। रहाओ सो जागै जे सतगुर मिलै, पंच दूत ओ वसकत करै। सो जागै जो तत् बिचारै, आप मरै अवरा नै मारै। सो जागै जो एको जाणै, पर किरत छोड़ै तत् पछाणै। चहो वरना विच जागै कोए, जमै कालै ते छूटै सोए। कहत नानक जन जागै सोए, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। पैरव महला तीजा। जा कौ राखै अपनी सरनाई, साचै लागै साचा फल पाई। रे जन कैस्यो करो पुकारा, हुक्मे होवा हुक्मे वर्तारा। रहाओ एहो आकार तेरा है तारा, खिर मैं बिनसै करत ना लागै बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा पूजो परम ना पूलो कोए। पैरव महला तीजा। मैं कामण मेरा कंत करतार, जिहा कराए तिहा करी सिंगार। जात पावै ता करे भोग, तन मन साचे साहिब जोग। रहाओ उसत निंदा करे क्या कोई, जाया पे वरतै एको सोई। गुर प्रसादी प्रेम कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई। पंडित नानक करे क्या कोए, जिसनो आ मिलावै सोए। पैरव महला तीजा। सो मुन जे मन की दुबदा मारे, दुबदा मार ब्रह्म बिचारे। इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। रहाओ मूल मोह कर करतै जगतो पाया, ममता लाए परम पुलाया। इस मन ते सब पिंड पुराना, मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा। कर्म होवै गुर कृपा करै, एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै। मन का स्वभाव सदा बैरागी, समय वसै अतीत अनरागी। कहत नानक जो जाणै पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरव महला तीजा। राम नाम जगत निस्तारा, पवजल पारो तारनहारा। गुर प्रसादी हर नाम समाल, सदी निभाए तेरे नाल। रहाओ

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। बिन नावें मनमुख।

प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पूजा मनहार रहाओ। सब मैं एको रव रहया गुरबिन बूझना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए। सुखदाता हर एक है होर थे सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेवया दाता से अंत गए पछताहे। सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति जो समाए। पैरव महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना पूला चोटा खाई मर मर जम सदा दुख पाए दर की खबर ना पाई। मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे पवजल तरना रहाओ। पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूखयत बहुती भौकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरे फिर जीवै तिनको मुख द्वार अंतर शांत सदा सुख होवै हर राख्या और तार। ज्यो तिस पावै तिवै चलावै करना किशु ना जाई नानक गुरमुख शब्द समाले राम नाम वड़ियाई। पहरो महला तीजा हमें माया मोहे खवाया दुख हटे दुख आए अंतर लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए। मन मुख त्रिग जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदन लागे प्यार रहाओ। पशुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड़ कमाने कूड़ो होए सतगुर मिले ता उल्टी होवे खोज लह जन कोए। हर हर नाम हृदय सदवसिया पाया गुणी निदान गुर प्रसादी पूरा पाया चूका मन अभिमान। आपे करता करे कराए आपे मार्ग पाए आपे गुरमुख दे वड़ियाई नानक नाम समाए। पहरो महला तीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला दूजे पाए फाथे जमजाला सतगुर करे मेरी प्रतपाला हर सुखदाता मेरा नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे सासना ते बालको गम ना करे रहाओ। माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लियो उबारे। प्रहलाद कह सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुरदिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रगराया। हाथ खड़ग करताया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझ ले उबार। खिन मैं भयान रूप निकसिया थम्यो पाड़ हर नाक्ष नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार्य सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे। गुर कै शब्द हमें बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे। पहरो महला तीजा आपे दैत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख ना होई। जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने सब दे मेल मिलाया। रहाओ आंदन भगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई। मूर्ख दुबदा पड़ है मूल ना पछाण है बिरथा जन्म गवाया। संत जना की निंदा करे दुष्ट दै चढ़ाया। प्रहलाद दुबदा ना पड़े हर नाम ना छोड़े डरे ना किसे दा डराया। संत जना का हर जियो राखा दैते काल नेड़ाया। अपनी पैज आपे राखे भगता दे वड़ियाई नानक हर नाक्ष नखी बिदारिया अंधे दर की खबर ना पाई।
राग भैरव महला चौथा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जन संत कर कृपा पग लायण गुर शब्दी हर पज सुरत समायण मेरे मन हर भज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण रहाओ संगत साध मेल हर गायण गुरमती ले राम रसायण गुर साधु अमृत ज्ञान सर नायण सब किले विख पाप गए गावायण तू आपे करता सृष्ट तरायण जन नानक मेल तेरा दास दसायण भैरव महला चौथा बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी मेरे मन हर भज नाम नर हरी कर कृपा मिलो गुरपूरा सत संगत संग सिंध पौतरी रहाओ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी कोट कोट अंतर तेरे पाप पर हरी सत संगत साध तूर मुख परी इशनान कियो अठसठ सुरसरी हम मूर्ख कव हर कृपा करी जन नानक तारियो तारण हरी भैरव महला चौथा सुकिरत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली हर हर नाम जपो बनवाली कर कृपा मिलो सतसंगत टूट गई माया जमजाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस घड़ी है शब्द सच्ची टकसाली हर अगमा गोचर गुर अगम दिखाली विचकाया नगर लद्दा हर पाली हम बारक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नदर निहाली भैरव महला चौथा सब कर तेरे तू सबना माहे तुझते बाहर कोई ना है हर सुखदाता मेरे मन जाप हाँ तुद सालाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाओ जै जै देखा तै हर प्रभ सोए सब तेरे वस दूजा अवर ना कोए जिस कौ तुम हर राख्या पावे तिसके नेड़े कोई न जावे तू जल थल महियल सब ते भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर भैरो महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूर्त जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक भाग होवे जिस लिखिया सो गुरमत हृदय हर नाम समार मधसूदन जपिए और तार देही नगर तस्कर पंच धातु गुरसब्दी हर का डे मार रहाओ जिनका हर सेती मन मान्या तिन कार्ज हर आप सवार तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर अंगीकार किया करतार मता मसूर तो तां किश की जय जे किश होवे हर बाहर जो किश करे सोई पल होसी हर त्यावो अंदर नाम मुरार हर जो किश करे सो आपे आपे ओ पूछना किसे करे बीचार नानक सो प्रभसदा त्याई है जिन मेलिया सतगुर कृपा तार भैरो महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी जिन जप्यागत होए हमारी तिनका दर्श देख मन बिकसे खिन खिन तिनको हों बलिहारी हर हृदय जप नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दास संदास की जय पनिहारी रहाओ तिन मत यूतम तिन पत यूतम जिन हृदय वस्या बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध ना पाया ते हर दर गए कर डे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे तिन ना कटे सृजनहारी हरे आप बोलावे आपे बोले हरे आप निरंजन निरंकार निराहारी हर जिस तू मिलै सो तुद मिलसी जन नानक आए जंत विचारी भैरो महला चौथा सतसंगत साई हर तेरी जत हर जित हर कीर्त हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्रेवै नित चरणे
जग जीवन हर त्याय तरने अनेक संख नाम हरते रे ना जाही जेवा इत गणने रहाओ। गुरसिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सो कणे। तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने। हर हर अगमो नाम हर तेरे विच भगता हर तरने नानक जन पाया मत गुरमत।

ना बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाहा, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंदक कौ अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथु नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊप पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपि तपि सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाना, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पहरो महला पंजवा, निकट बुझे सो बुरा क्यों करे, बिक संचय नित डरता फिरे, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़े नेड़े सब को कह, गुरमुख भेद बिरला को लहै, रहाओ निकट ना देखे पर ग्रह जाए, दर भिरे मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जाने आ, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड, अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया ललाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਟੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਕੋਏ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਟੋ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ, ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤਿਨ ਭਉ ਦੂਰ ਕੀਆ ਏਕ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਫਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ ਮਾਨਸ ਬਾਣ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ, ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੈਸੀ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰ, ਤਿਸਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੜ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਹੋਵੈ ਬਾਹਰ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਵਿਸਰੈ ਨਰ ਹਰ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪਾਏ, ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਕੜੇ ਕੜ ਪਚਿਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਖਪਿਆ, ਰਹਾਓ ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਅਨਿਆਇ ਕੋ ਮਰਤਾ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਕਿਸ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ, ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਹੀ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਏ ਧੰਗਾਣੈ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਭੂਲ ਰਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੋ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤੇ, ਤਬ ਕਾੜਾ ਛੋੜ ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਸੋਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕਰ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਕਰੈ ਨਿਬੇਰਾ, ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਇਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਏ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ, ਬਿਨ ਕੰਠੈ ਕੈਸੇ ਗਵਨਹਾਰੀ, ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੋ ਤਰਿਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਪਰਿਆ, ਰਹਾਓ ਬਿਨ ਜਿਹਵਾ ਕਹਾਂ ਕੋ ਬਗਤਾ, ਬਿਨ ਸਰਵਨਾ ਕਹਾਂ ਕੋ ਸੁਨਤਾ, ਬਿਨ ਨੇਤਰਾ ਕਹਾਂ ਕੋ ਪੇਖੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਰ ਕਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ, ਬਿਨ ਅਮਰੈ ਕੈਸੇ ਰਾਜ ਮੰਡਿਤ, ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਕਹਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਕਹਾਂ ਬੈਰਾਗੀ, ਬਿਨ ਹਉ ਤਿਆਗ ਕਹਾਂ ਕਉ ਤਿਆਗੀ, ਬਿਨ ਬਸ ਪੰਚ ਕਹਾਂ ਮਨ ਚੂਰੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਸਦ ਹੀ ਚੂਰੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਕਹੋ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ, ਬਿਨ ਪੈ ਕਖਨੀ ਸਰਬ ਬਿਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਮਾਨਖ ਕਉ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਂਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚਮੋਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੋਰੰਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਰਹਾਓ ਜਿਹਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸ ਆਨੋ, ਬਾਸਨ ਰੋਗ ਭਵਰ ਬਿਨਸਾਨੋ, ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਤ੍ਰਿਬਦ ਰੋਗ ਮੈਂ ਬਦੇ ਬਿਕਾਰਾ, ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ, ਰੋਗੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ, ਰੋਗ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਰਤੀ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਕੀਨੀ ਦਇਆ, ਬਾਂ ਪਕੜ ਰੋਗੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ, ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁਖ ਪੰਜ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਬੈ ਨਾ ਝੂਰੀ, ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰਹਾਓ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਧਨਵੰਤਾ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਨਿਭਰੰਤਾ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣੇ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ,
चीत आवै सद कीर्तन करता मन मान्या नानक भगवंता पैरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चिरंगजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा बनासी कुटुंब हमारा नहीं करवासी। हम सुख पाया ता सवै सुहेले गुरपुरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते उच्चे देश मेरे बेअंता पूछे राज हमारा सदी निचल माल हमारा खूटा बेचल। शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर। कीर्त हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे मांज पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूते कै रंगलीने पैरो महला पंजवा। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवै ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पय दयाला नानक दास देख पय निहाला। पैरो महला पंजवा सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सबसका दाता सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वड़ियाई प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दी बाण। सतगुर कहो सदबल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत भेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद पैरो महला पंजवा। नाम लैत मन प्रगट पया नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया नाम लैत अठ सठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अतमूढ़ सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुने चार अवर कर्म लोके पतियार पैरो महला पंजवा। नमस्कार ता को लख बार एहो मन दीजै ता को वार। सिमरन ता कै मिटै संताप होए आनंद ना व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जा की दृष्ट दुखडेरा टहै अमृत नाम शीतल मन गहै। अनक भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊने सुबर भरिया खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार कहो नानको जिस आप दयार पैरो महला पंजवा।
मोहे दुहागन आप सिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुखर सगल संताप गुर होए मेरी माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटिया देर भय प्रगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद गुरपूरा पूरा प्रसाद जा कहो प्रगट भय गोपाल ता कै दर्शन उसदा निहाल सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान जा को सतगुर दियो नाम जा कहो भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो जन प्रभ पाए ताकी रेन बिरला को पाए पैरो महला पंजवा चितवत पाप ना आल के आवै बेसवा भजत किशने शरमावै सारो दिन समझूरी करै हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै माया लग पुलो संसार वा पुलाया पुलावन हारै राच रहया बिरथा व्योहार रहाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करै कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मंत आवै करने हारना जी मैं आवै करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत ना कार्य माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना जिसके राखे होए हरे आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया पैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए सा शब्द हृदय मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो नित पाई तार लय सागर संसार रहाओ जिन को लिखिया हर एहो निदान से जंतर गै पावै मान सुख सहजानंद गुण गाओ अगे मिले निथावे थाओ जुगै जुगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लय सो लागै जन्म जन्म का सोया जागै तेरे भगत भगतन का आप अपनी मैं माया पे जाप जी जंत सब तेरे हाथ नानक के प्रभ सदी साथ पैरो महला पंजवा नाम हमारे अंतर जामी नाम हमारे आवे कामी रोम रोम रव्या हर नाम सतगुर पूरे कीनो दान नाम रतन मेरे पंडार अगम्या मोला अप्रिया पार रहाओ नाम हमारा निचल तनी नाम की महिमा सब में बनी नाम हमारा है पूरा साहो नाम हमारा है बेपरवाह हो नाम हमारा भोजन पाओ नाम हमारा मन का सुहाओ नाम ना विसरै संत प्रसाद नाम लै तो अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बन आई धनवंते सही प्रधान नानक जाके नाम निदान पैरो महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जी प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकर हूं दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा कर कृपा करो प्रभदात तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ हम तेरे जंत तू बजावन हारा हम तेरे पिखारी दान दे दातारा तव प्रसाद रंग रस माने कट कट अंतर तुम्हें समाने तुमरी कृपा ते जपिए नाओ सा संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते होए दर्द विनाश तुमरी माया ते कमल विगास हम बलिहार जाऊं गुरुदेव सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव
दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक ने तेरे। पैरो महला पंजवा, सब ते ऊंच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार। ऊंचे ते ऊंचा जाका थान, कोट अग्गा मिटै हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए। रहाओ जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदर रंग। दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मै थापो थापनहार। जा का हुक्म ना मिटै कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया। बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया। बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग ना होए। बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नोना म्याधार। रहाओ त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वड पागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन दी जावै, स्वांग उतारे है फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार। एक वस्तु जे पावै कोए, पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो प्रवान। पैरो महला पंजवा, संत की निंदा जोनी भवना। संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम। दान दैत निंद कौ जाम, संत संग करे जो बाद। तिन निंदे नाही के साद। रहाओ भगत की निंदा कंध छेदावै, भगत की निंदा नरक पुंचावै। भगत की निंदा गर्भ में गलै, भगत की निंदा राज ते टलै। निंदक की गत कत हू नाहे, आप भी जापे ही खाहे। चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार। निंदक सिर तरा, पार ब्रह्म के भगत निर्वैर। सो निस्तरै जो पूजै पैर, आद पुरख निंदक पोलाया। नानक कीर्तना जाय मिटाया। पैरो महला पंजवा, नाम हमारै बेदियर नाद। नाम हमारै पूरे काज, नाम हमारै पूजा देव। नाम हमारै गुर की सेव, गुरपूरै दृढ़ो हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम। रहाओ नाम हमारे मजन इशनान, नाम हमारे पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत। नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे तृप्त सो भोग। नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक। मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवै नाओ। पैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना। अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम। भगत अपने कहो देवो नाम,

रोगी का प्रभ खंडव रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। निथावे कहो तुम थान बैठावो, दास अपने कहो भक्ति लावो। निमाने कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सो ज्ञान। सगल पयान का पौ नस, जन अपने कह हर मन बस। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कर कृपा संत टहल लाए, नानक साधु संग समाए। पहरो महला पंजवा, संत मंडल में हर मन वसै। संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल दीत। संत संग हुए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन्म मरण रहे, संत मंडल में जम किशु ना कहे। संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निचल आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुणतास। संत मंडल ठाकर विश्राम, नानक ओतपोत भगवान। पैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप। तेह जन होए न दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करे तिस ऊपर ते

पहरो महला पंजवा तेरी टेक रहा कल माहे, तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक न पो है काल, तेरी टेक बिन सह जंजाल। दीन दुनिया तेरी टेक, सब मैं रविया साहेब एक रहाओ, तेरी टेक करो आनंद, तेरी टेक जपो गुरमंत, तेरी टेक तरिय पौ सागर, रखन हार पूरा सुख सागर, तेरी टेक नाही पौ कोए, अंतर जमी साचा सोए, तेरी टेक तेरा मन तान, इहां उहां तू दीवान, तेरी टेक तेरा प्रवासा, सगल ते आवे प्रभ गुणतासा। जप जप आनंद करहै तेरे दासा, सिमर नानक साचे गुणतासा, पहरो महला पंजवा, प्रथमे छोड़ी पराई निंदा, उतर गई समन की चिंदा, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रपेख हजूर, ऐसो त्यागी विरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ, अहं बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साज जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मैं पूर्ण भगवान, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, गुरपुरे हर नाम दरड़ाया, कर कृपा जिस राख आप, सोई भगत जपै नाम जाप, मन प्रगास गुरते मत लई, कहो नानक ताकी पूरी पई, पैरो महला पंजवा, सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नित नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, साध संगत पाई एवड पागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ, बंधन मात पिता सुदबंता, बंधन कर्म तर्म हों करता, बंधन काटन हार मन वसै, तव सुख पावै निज कर बसै, सब जाचक प्रभ देवन हार, गुण निधान बेअंत अपार, जिसनों कर्म करे प्रभ अपना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने अगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कहो नानक तुमरी सरनाई, जो पावे त्यो रखो गुसाई, पैरो महला पंजवा, गुर मिल त्याग्यो दूजा पाओ, गुरमुख जपियो हर का नाम, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ, रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर भेटत मन पया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत, जन मरण की मिटी जमत्रास, साध संगत ऊंद कमल विगास, गुण गावत निचल विश्राम, पूर्ण होए सगले काम, दुलभ देह आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभ कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरो महला पंजवा, सब ते उच्चा जा का नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसै मन आए, सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ, पुरख निरंजन सृजनहार, जी जंत देवै आहार, कोट खते खिन बख्शनहार, भगत पाए सदा निस्तार, साचा तन साची वड्याई, गुर पूरे ते निश्चल।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लए दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रखनहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राख है देकर हाथ निर्मल शोभा निर्मल दीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान भैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखाओ तेरी सरना बल बल जाई सदगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सो वड भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरह संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिदमाहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जना आया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने भैरव महला पंजवा नाम लै तो किश बिग ना लागे नाम सुन तो जम दूरों भागे नाम लै तो सब दुख है नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमरत किस चाख ना जो है हर सिमरत दैत देव ना पुहै हर सिमरत मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जो ना रुदै हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया केला जात अजात जपै जन कोए जो जापै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे बेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वथ करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ आपे वन तरण त्र पवन सार जाकै सूत प्रोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्वाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए
ਤਿਸ ਬਿੰਦ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ, ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨਤਾ ਕੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧਨ, ਪਹਿਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ, ਭੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਰਹਾਓ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੈ ਹਾਥ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ, ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਬੰਧ ਨਾਰਾਇਣ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ, ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪੁਰਖਾਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ, ਪਹਿਰਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਿਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ, ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ, ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਵੈਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ,

नाव मेरे बंद पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हों ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौ नद मेरा, संपै हेत कला तो तम तेरा। रहाओ आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हाथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है हो संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कहे कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कतै ना जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामै हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरौ ना पाती पूजौ ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजौ सदा सदा मनावौ, ऐसी सेव दरगह सुख पावौ। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज मैं बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहा होएगा वो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चेतना तरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सरदन दोनों भाई, प्रभु की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारंग पानी। आबना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुविद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुद्ध सार, तह तुम मिलकै करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर्म मेरा कर कर मरै निज पद।

सो सुरतान जो दोए सर तन है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदा है, कबीर का स्वामी रया सुमाए। महल्ला पंजवा, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए। ठाकर हमरा सदबोलंता, सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ, अंतर देव न जन अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म निफल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कौन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई। कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समय देख सकत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे, दीपक पतंग।

काई रहाओ पंखी मृग माया मैराते साकरमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कहे कबीर जैसे उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु काज सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राय जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्र सह सलाह रह जाके सवा लाख पै काम्बरता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर मैल को पावे रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हमसरा पिखारी देव जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रह माना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कहे कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर आडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापन दरवाजा क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर तै मनमावासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अग्न सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़े ओ गढ़ को राजा भगवत पीर सकत स्मरण की कटी काल पै फांसी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अबनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहे हो समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कहे कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम द्रुगम गण रचियो बास जामै जोत करे प्रगास बिजली चमके होया आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागे जरा मरण छूटे परम भागे रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हम मैं गावन गावे गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगम्या गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को तरनी तर मंत
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दल अभ्यंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मन सरोवर कर स्नान। सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइय गुर की साम। तारी न टरे आवे न जाए, सुन सज मेरे उसमाए। मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपै होए। जोत मंत्र मन अस्त्र करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचाओ तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। राहो कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थर। समुद कोट जा कै पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार। कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जा के सेवा करे। छप्पन कोट जा के प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

नाम असंख कोटियन पूजा करी, एक ना पूजस नाम हरी। प्रणवै नाम दे हो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसे नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पितर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम दे हो ना कै बिना, ना सो है बत्ती सलखना। दूध कटोरे गड़वै पानी, कपल गाए ना मैं दुहयानी। दूध पियो गोविंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्ञा धरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू कूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू भूम पै आर ना पावै। भणत नाम दे एक नाम निस्तारै, जे गुर मिलै ते पार उतारै। हस्त खेलत ते

आए जाम ना पीजै साच नाए रहाओ। दस अठ लिखे होवे पास चारे वेद मुखागर पाठ। पुरबी नावे वरना की दात वर्त नेम करे दिन रात। काजी मुल्ला होवे सेख जोगी जंगम पगवे भेख। को गृही कर्मा की संद बिन बूझे सब खड़ियस बंद। जेते जी लिखी सरकार करनी उपर हो वगसार। हुक्म करै मूर्ख गावार नानक साचे के सिफत भंडार। बसंत महला तीजा तीजा बस्त्र उतार दिगंबर होग। जटा तार क्या कमावे जोग। मन निर्मल नहीं दसवें द्वार भ्रम भ्रम आवे मूड़ा वारो वार। एक त्यावो मूड मना पार उतर जाए एक खिना रहाओ। सिमरत शास्त्र करै वख्याण नादी बेदी पड़े पुराण। पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिनकै रमैया नेड़ नाहे। जे को ऐसा संजमी होए किरिया वसेख पूजा करे अंतर लोभ मन बिखिया माहे। ओए निरंजन कैसे पाहे कीता होवा करे क्या होए। जिसनो आप चलाए सोए नदर करे ता परम चुकाए। हुक्मै बूझै ता साचा पाए जिस जीव अंतर मैला होए। तीर्थ पवै दिस अंतर लोए नानक मिलिए सतगुर संग। तौ पवजल के टूट संबंध बसंत महला पहला। सगल पवन तेरी माया मोह मैं अवरना दिसै सर्ब तोहो। तू सुरनाथा देवा देव हर नाम मिलाए गुरचरण सेव। मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल गुरमुख राम नाम गुण गाए। तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साधना पाईए हर का संग। बिन गुर मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना शुद्ध होए। गुर शब्द सलाहे साच सोए जा को तू राखै रखनहार। सतगुरु मिलावै करै सार बिख हमै ममता पर हराए। सब दुख बिनासे राम राए ऊतम गातमित हर गुण शरीर। गुरमत प्रगटे राम नाम हीर लिव लागी नाम ताई दूजा पाओ। जन नानक हर गुर गुर मिलाओ बसंत महला पहला। मेरी सखी सहेली सुनहो पाए मेरा पिरी सालू संग साए। ओह अलख ना लखिए कहो काए गुर संग दिखायो राम राए। मिल सखी सहेली हर गुण बने हर प्रभ संग खेलै वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ मन मुखी दुहागण नाहे पेओ। ओह घट घट रावै सर्व प्रेओ। गुरमुख थिर चीनै संग देओ। गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ। बिन गुर भगत ना पाओ होए बिन गुर संत ना संग दे। बिन गुर अंधले तंद रोए मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए। गुर मन मार्यो कर संजोग अहिंस रावै भगत जोग। गुर संत सभा दुख मिटै रोग जन नानक हर वर सहज जोग। बसंत महला पहला आपे कुदरत करे साज। सच आप नबेड़े राज राज गुरमति उत्तम संग साथ। हर नाम रसायण सहज आथ मत बिसर सिरे मन राम बोल। अपरंपर अगमा गोचर गुरमुख हर आप तुलाए तुल तोल रहाओ। गुरचरण सिरे वै गुर सिख तोर गुरसेव तरे तज मेर तोर। नर निंदक लोभी मन कठोर गुरसेव ना पाई से चोर चोर। गुर तुठा बक्से भगत पाओ गुर तुठै पाईऐ हर महल ठाओ। पर हर निंदा हर भगत जाग हर भगत सुहावी कर्म भाग। गुर मेल मिलावै करे दात गुरसिख प्यारे दिन सरात। फल नाम प्राप्त गुर तुस दे।

प्राण आधार मन, जियो प्राण सब तेरो तहनु रहाओ। जा कौ खोज सुर नर देव, मुन जन सेखना लह पेव। जा की गत में तो कही ना जाए, घट काटो घट काटो रया समाए। जाके भगत आनंद में, जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै, जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रभर हो समाए। नानक जाचा एक दान, कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवां, मिल पानी जो हरे बूट। सब कही ना जाए, घट काटो घट काटो रया समाए। जाके भगत आनंद में, जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै, जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रभर हो समाए। नानक जाचा एक दान, कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवां, मिल पानी जो हरे बूट। साध संगत त्यों मैं छूट, जैसी दासे तीर मीर। तैसे उदाहरण गुरह पीर, तुम दाते प्रभ देन हार। निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ। जिसे प्राप्त साध संग, तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते पय मुक्त, भगता राधा जुग जुगत। नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक। तृष्णा बूझी गुर प्रसाद, मन या गाना हर सह सुवाद। सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख परंपर देव। सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो एहो निदान। बसंत महला पंजवां, तुम बड़दाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे। दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान। हाँ कछु ना जाना तेरी सार, तू कर गत मेरी प्रभ दयार रहाओ। जापना तापना कर्म कीत, या वह नाही कशुरीत। मन में राखो आसेक, नाम तेरे की तरह टेक। सर्व कला प्रभ तुम प्रवीन, अंत ना पावे जलह मीन। अगम अगम ऊंचे ते ऊच, हम थोरे तुम बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी। जिन तू सेव्या सुखी से, संत सरन नानक परे। बसंत महला पंजवां, तिस तू सेव जिन तू किया। तिस आराध जिन जियो दिया। तिसका चाकर हो है फिर डान ना लागे। तिसकी कर पोतदारी फिर दुख ना लागे। एवड भाग होए जिस प्राणी, सो पाए पर निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरथा, कशुना होई है पूर्ण अर्था। मानस सेवा खरी दुहेली, साध की सेवा सदा सुहेली। जे लोड़े सदा सुख पाई, साधु संगत गुरै बताई। ऊहा जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम। सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान। हर कीर्तन में उत्तम धुना, नानक गुर मिल गाए गुना। बसंत महला पंजवां, जिस बोलत मुख पवित होए। जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस आराधे जम किश ना कहे, जिसकी सेवा सब किश लह। राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम रहाओ। जिसके तारे तरन आकाश, कटकट जिसका है प्रगास। जे सिमरत पतत पुनीत होए, अंतकार फिर ना रोए। सगल धर्म है उत्तम धर्म, कर्म करतूत कै ऊपर कर्म। जिसको चाहे सुर नर देव, संत सवा की लगो सेव। आद पुरख जिसकी यादान, तिसको मिलिया हर निदान। जिसकी गतमित कही ना जाए, नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवां।
ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰ ਲਾਗੀ ਪਿਆਸ, ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆਸ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੰਤ ਬਨਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰਧਾਰੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਾ ਰਹਾਓ, ਸਮਰੱਥ

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीव नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो समटे अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करण हार, ई तूत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाके सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपूरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवा, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवे नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, साखत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुरमिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नव निद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रमण योग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवा, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवा, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने करथाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम,
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ

सोई तुझै पछाण है, तेरियां भगतां कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रहाओ, तेरी सेवा तुझते होवै और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावै जिसनो तू रंग तरता, तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समर्थ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा, तेरा महला गोचर मेरे प्यारे बिखम तेरा है पाना, कहो नानक टह पया द्वारा रख ले वो मुगदया जाना, बसंत हिंडोल महला पंजवां, मूल न बुझै अपना सूजै, परम व्यापी अहमनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभते होवै ए बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंग राते कल मैं सुखिए से गनी, आवरे पाओ ना को सूजै नानक तरिये गुर बचनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हिंडोल महला नावा, साधो एहो तन मिथ्या जानो या पीतर जो राम बस्त है साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की देह का ऐडानो, संग त्योहार है कछु ना चल है ताहे कहां लपटानो, उस्तत निंदा दो पर हर हर कीर्त और आनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण एक पुरख भगवानो, बसंत महला।

जोगी जंगम अर सन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जे हर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए। बसंत महला नावा माई मैं तन पायो हर नाम। मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया। तृष्णा सकल बिनासी मनते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै। कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम। तन बिनसै जम स्यों परे काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार। तन दारा संपत ग्रेह कै संग ना चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग। बसंत महला नावा कहां पूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कछ बिगड़ियो नाहन अजो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर भाई ताहे मीत। बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदिया कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम बिसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुद्ध बुदाहेर। मात्र बूंद ते तार चक फेर सर्ब जोत नामै की चेर। सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चलै सो चोर। पत खोई बिखियंचल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए। जो किश कीनस प्रभर जाए पै माने निरपो मेरी माए। कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खीलै बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम पणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर सबदी बिखत्यास निवास। गुर सबदी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे। गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए। अत लुब्ध लुबानो बिख माए। नए असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए गुर शब्द विचारे।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरन का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा नाहे, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तय पाई है, एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्र पौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बदे महाबली, कर सच्चा ढोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सब मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रह, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याईन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाओ तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कै पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्यकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देख लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाड़ कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहा पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहा सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਨ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣ ਜਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

आगे कहो पंडित सूचा कम ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मंग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही अरे बसै रहाओ। जैसे अपने तनह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा। संसार समुंदे तार गोबिंदे तार ले बाप बीठला। रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकाओ तेरा पार ना पाया बीठला। हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा। नामा कहे हों तार पी ना जाना मोको बहां दे बीठला। सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लेकर हागती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर तोवन चाली लाडली। रहाओ तोबी तोवे बिरा बिराता हर चरण मेरा मन राता। पंत नाम देव रम रहे अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कशु नाहे पहरावा देखे उपजाहे। गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ। तू काए गर्भ बावली जैसे पांदव खूंबराज। तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद। तन सुगंध ढूंढे परदेस आप तन का जो करे विचार। तिस नहीं जम कंकर करे खुवार। पुत्र कलत्र का करे हंकार उठाकर लेखा मंगनहार। फेड़े का दुख सह जियो पाछे किसे पुकार है पियो पियो। साधु की जौ लेहे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल। इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे और किसी के

जैसा करै कहावै तैसा, ऐसी बनी जरूरत। होवै लिंग चिंग न होवै, ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है, अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुर शब्दी मिलिया। सतगुर कै पाणे जो चलै, हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श में लायान फिर गर्भ ना गलिया, श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान। जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा, नौमी नेम सच जे करै, काम क्रोध तृष्णा उचरै। दसवीं दसे द्वार जे ठाकै, एकादशी एक कर जाणै। द्वादशी पंच वसगत कर राखै, तौ नानक मन मानै। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजै। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया, कर कर हेत वधाए दे पर दर्ब चुराया। पुत्र कलत्र नाम विस है, बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछता पछताया। जम दर्ब दे मारिए नानक हर पाया, श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावै गीत, भुखे मुला करे मसीत। मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए। काल खाए किश हथों दे, नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप, कहया बिरदना जाननी, मन अंधे उंधे कवल दिसन खरे करूप। एक कह जान कहया बुजन, ते नर सूड स्वरूप। एक ना नादना बेदना गी रस, रस कस ना जानंत। एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सार, अखर का प्यो ना लहंत। नानक से नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित है, तन संपै माया। हर अर्थ जो खर्च दे, देंदे सुख पाया। जो हर नाम ते आए दे, तिन तोट ना आया। गुरमुखा नदरी आमदा, माया सुट पाया। नानक भगता होर चेतना आवई, हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुर सेवन से वडभागी, सचै शब्द जिन्ना एक लिव लागी। ग्रह कुटाम मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा। गणतै सेवना होवई, कीता थाए ना पाए। शब्दै साधना आयो, सच ना लगो पाओ। सतगुर प्यारा ना लगई मन ठिया वै जाए। जे एक विख अगाहा भरे, ता दस विखा पिछाहा जाए। सतगुर की सेवा चाकरी, जे चलै सतगुर पाए। आप गवाए सतगुरु नो मिलै, सहजे रह समाए। नानक तिन्ना नाम नावी।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ, अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राए, दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तो मैं सब सुख पाए, संत सभा उठ गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए, मलार महला पंजवा खीरा धार बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई, सार संभाल माता मुख नीरे तबो तृप्त गाई, हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी, पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना, मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करिया तजो सगलां देसा, कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा, सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ, मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए, जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पय सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया, सखी सहेली पय आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ न जाई दूरे, मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनक बार प्रमै बो जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ, त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघै कथ सागर बिरथा कथत हम तरते, शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते, नानक सरन चरण

तन सुख वसै आए रोग गवाए अपना ता नानक वैद सदाए। पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दिते वेद पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सुबाया। ईस महेसर सेव तिन्नी अंत ना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदै लाए आप छपाया धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया श्लोक महला दूजा। सामने आया हे सखी कंतै चित करे हो नानक चूर मरै दोहागणी जिनावरी लागा ने हो महला दूजा। सामने आया हे सखी जल हर बरसन हार नानक सुख सवन सोहागणी जिन सह नाल प्यार। पौड़ी आपे शिंज पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़थू पाए गुरमुख मचिया। मन मुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप पिड़ै मारे आप आप कार्ज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिया हुक्मी लिखै सिरलेख। विण कलम मसवाणी है सतसंगत में लाप जिथे हर गुण सदा वखाणी है। नानक सच्चा शब्द सलाहे सच पछाणी है।

मासो ही मास्यु बजै मासो सबो साक सतगुर मिलै हुक्म बुझियै ताको आवै रास आप छुटे न छुटियै नानक बचन विनाश महला पहला मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंडा मार होम जग किए देवत्यां की बाणे मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मान सखाने फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे से क्यों कहिए नानक अंधे से ओ क्या कहिए कहे न कहे आबूजे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मांस ना खाही स्त्री पुरख है जानिस मेला उथे मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान का सूझै नाही चतर कहा वह पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा अपख पख पख तज छोड़े अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कछ सूझे नाही चतर कहा वै पांडे मास पुराणी मास कते भी चह जुग मास कमाना जज काज भी आहे सुहावे उथे मास समाना स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना जे ओए दिसै नरक जांदे ता उनका दान ना लैना देंदा नरक सुर्ग लैंदे देखो एह तिंगाना आप न बुझै लोक बुझाए पांडे खरा सियाणा पांडे तू जाने ही नाही किथो मास्यो पन्ना तोयो अनक मादक पाहा तोयो त्रिभवन गन्ना तो वा आखे हाँ बो बिदहचा तो वै बहुत बेकारा एते रस छोड़ हो वै सन्यासी नानक कह विचारा पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा किन्हीं पाया सच्चा शब्द विचार से तुझी माए समाया एक भगवा वेस्कर परम देवन सदगुर के ना पाया दे दसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द तन है कर चानने आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल वेस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा नानक दुनिया किया वड़ियाइया अग्गी से तीजाल इनी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाणा कन चढ़िया नचसी सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पक्षी फाथा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सहोग कून निखुटसी सलोक महला पहला घर मैं घर दे खाए दे सो सतगुर पुरख सुजान पंच शब्द तुन कार तुन तह बाजै शब्द निशान दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान तार कोर बाजंतर तह साज तख्त सुल्तान सुख मन कै कर राग सुन सुन मंडल लिव लाए कथ कथा बिचारी है मनसा मन समाए उल्ट कमल अमृत भरिया एहो मन कतो ना जाए अजप्पा जापना विसरे आज जुगा समाए सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास
ਸ਼ਬਦ ਖੋਜਿਓ ਕਰ ਲਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚਿਲ ਮਿਲ ਬਿਸਿਆਰ ਦੁਨੀਆਂ ਫਾਨੀ ਕਾਲੂਬ ਅਕਲ ਮਨ ਗੋਰ ਨਾ ਮਾਨੀ ਮਨ ਕਮੀਨ ਕੰਮ ਤਰੀਨ ਤੂੰਦਰੀ ਆਓ ਖੁਦਾਇਆ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਜੈ ਦੇਹ ਅਵਰ ਜਹਿਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੈ ਹਿਕਮਤ ਖੁਦਾਇਆ ਮਨ ਤੋਂ ਆਨਾ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਨ ਮਸਤਾਨਾ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਆਤਸ ਦੁਨੀਆਂ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਨਵੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਚਲਤ ਚਲਤ ਵਖਾਣਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਲੱਥੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੀ ਸਾਣਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਪਹਿ ਨਿਕਾਣਿਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾ ਤਾਰ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਮਿਹਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਣਿਆ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਖਸਮੈ ਪਾਣਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧਨ ਧਨ ਭਾਂਡਾ ਤਨ ਮਸ ਧਨ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੇ ਤੂੰ ਏਕੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਦਾ ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਤੂੰ ਅਲਾਖਾ ਗੋਚਰ ਅਗਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਿਖਾਈ ਅੰਤਰਾ ਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗਵਾਈ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਮੇਲ ਲੈ ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖਿਆ ਗਮ ਹੈ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਏ ਸੱਚਿਆ ਤਿਤ ਕੋ ਲੱਗੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਸੁਧ। ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੇਵੀ ਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇਆ ਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਭਗਤ ਦਾਨ ਦੀਜੈ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਜਨ ਰਹਾਓ ਜਾਂਚੈ ਘਰ ਦਿਗ ਦਿਸੈ ਸਰਾਏ ਚਾ ਬੈਕੁੰਠ ਭਵਨ ਚਿੱਤਰਸਾਲਾ ਸਬਤ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਪੂਰੀ ਅਲੇ ਜਾਂਚੈ ਘਰ ਲਛਮੀ ਕੁਵਾਰੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀਵੜੇ ਕੌਤ

काल बपड़ा कोटवाल सो करा श्री। सो ऐसा राजा श्री नर हरि जांचे कर कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावड़ा जिन विश्व संसार राचीले जांचे कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखीले पाप पुन जांचे डांगिया द्वार चित्रगुप्त लेखिया धर्म राय परली प्रतहार। सो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कर गण गंधर्व रिखी बपड़े ढाडिया गवंत आचे सर्व शास्त्र बहु रूपिया अन गरुआ आखाड़ा मंडलीक बोल बोले काछे। चौर ढूल जांचे है पवन चेरी सकत जीतले पवन अंड टूक जाके पसमती। सो ऐसा राजा त्रिपवनपति जांचे कर कूरमा पाल सहसर फनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालिनी छिनवे करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नख प्रसेव जांचे सुरसरी सप्त समुंद जाके कड़थली ए तेजी जांचे वर्तनी। सो ऐसा राजा त्रिपवन धनी जांचे कर निकट वर्ती अर्जन त्रू प्रहलाद अमरीक नारद निजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहला एते जी जांच है करी सर्व व्यापक अंतर हरी। प्रण वह नाम देव ताची आन सगल भगत जाचे निशान मलार मोको तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रमैया रहाओ आलावंती हो परम जो है मुझ ऊपर सब कोपला सूद सूद कर मार उठायो कहां करो बाप बीठला मुए हुए जो मुक्त दे होंगे मुक्त ना जाने कोयला ए पंडिया मोको टेढ़ कह तो तेरी पैज पछौंडी होएला तू जो दयाल कृपाल कहियत है अद पुज पयो अपारला फेर दिया देहरा नामे कहो पंडियान कहो पिछवारला। मलार बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग हृदय राम गोबिंद गुण सारंग रहाओ सुरसरी सलल कृत बार नीरे संत जन करत नहीं पानं सुरा अपवित्र नात अवर जल रे सुरत सुरसरी मिलत न होए आनं तार तार अपवित्र कर मानिया रे जैसे कागरा करत विचारं भगत पागौत लिखिया तेह उपरे पूजिया कर नमस्कारं मेरी जात कुट बांडला ढोर टोवंता नितय बनारसी आस पासा अब बिपर प्रधान ते कर डंडौत तेरे नाम सरण आए रविदास दासा। मलार हार जपत तेउ जना पद्म कवलास पात ता समतुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्थरियो आन रे आन पर पुरुषो रहाओ जा कह भागवत लेखी है अवर नहीं पेखी है तास की जाता शोप शीपा ब्यास मैं लेखी है सनक मैं पेखी है नाम की नाम ना सप्त दीपा जा कह ईद बकरीद कुल गौरे बद करे मानिए सिख शहीद पीरा जा कह बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा जा के कुटंब के ढेड़ सब ढोर ढोवंत फिर है अजो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत तिन तनय रविदास दासान दासा। मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगते साध संगत पाई परम गते रहाओ मैले कपरे कहां लो धोवो आवेगी नींद कहां लग सोवो जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो झूठे बनज उठ ही गई हटियो कहो रविदास भयो।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल। जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत। हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस। जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे हर जप जपे, जप जापो जगदीश। तुमरे जन राम जप ते उत्तम, तिन कहो हौ कुम कुमे कुम कुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस। जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम। सतसंगत मिल पज राम, बढ़ हो भाग मथाम रहाओ। जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद। पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम। उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे। हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता। सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति। पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा। सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट। पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ। खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट। कर पेख ना पाईऐ, हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ। सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट। तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले। हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझै आपे। जन नानक के प्रभ कट कटे, कट कटे कट हर काट। कानड़ा महला चौथा। जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो। मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लीला दो रहाओ। बिख माया संच बहु चितै बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी। मिल सतगुरु गुर साधो, ज्यों शोहे पारस मनूर पए कंचन। त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधादो। ज्यों काष्ट संग लोहा बहु तरता, त्यों पापी संग तरे साध साध संगति। गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुरु नानक। सो आप तरह कुर सगल तरा दो। कानड़ा महला चौथा, हर जस गा।

गाइए गुण गोपाल कृपा निध, दुख बिंदारन दुख बिदारन सुखदा ते सतगुर, जा को पेड़त होए सगल सिद्ध रहाओ। सिमरत नाम मनै साधार, कोट परादी खिन मैं तार, जा को चीत आवै गुरे अपना, ता को दुख नहीं तिल सुपना। जा को सतगुर अपना राख, सो जन हर रस रसना चख, कहो नानक गुर की नी मया, हलत पलत मुख उजल पया। कानड़ा महला पंजवा, आराधो तुझै स्वामी अपने, उठत बैठत सोबत जागत, सास सास सास हर जपने रहाओ। ता कै हिरदै बस्यो नाम, जा को स्वामी कीनो दान, ता कै हिरदै आई सांत, ठाकर पेटे गुर पचनात। सर्व कला सोई परबीन, नाम मंत्र जा को गुरदीन, कहो नानक ता कै बल जाओ, कल युग मैं पाया जन नाओ। कानड़ा महला पंजवा, कीर्त प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंदन संतन, ऊहा चरण गोबिंद जी के बसना रहाओ। अनक भांत कर द्वार ना पावो, होए कृपालता हर हर त्यावो। कोट कर्म कर देह ना सोदा, सा संगत मैं मन प्रबोधा, तृष्णा बुझी बहुरंग माया, नाम लैत सर्व सुख पाया। पार ब्रह्म जा पय दयाल, कहो नानक तो छूटे जंजाल। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते रहाओ। पूजा चरना ठाकर सरना, सोई कुशल जो प्रभ जियो करना, सफल होत एह दुर्लभ देही, जा को सतगुर मया करे ही। अज्ञान परम बिनसै दुख डेरा, जा कै हृदय बसै गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया, कहो नानक तन पूरा पाया। कानड़ा महला पंजवा, भगत भगत नूं बनियाई, तन मन गलत पए ठाकर स्यों, आपन लिए मिलाई रहाओ। गावन हारी गावै गीत, ते उधरे बसे जे चीत, पेखे बिंजन परोसन हारै, जे भोजन कीनो ते तृपतारै, अनक स्वांग काचे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जा सुन तो माहयो, रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा, जातकत पेखो आहयो, सब ते परे परे ते ऊंचा, गहर गंभीरा थाहयो। ओत पोत मिलियो भगतन को, जन स्यो परदा लाहयो, गुर प्रसाद गावै गुण नानक, सहे समास समाहयो। कानड़ा महला पंजवा, संतन पह आप उधारण आयो, रहाओ दर्शन पेड़त होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो, काटे रोग पय मन निर्मल, हर हर औख दिखायो, अस्थित पय बसे सुख थाना, बहुर न कतहु तायो, संत प्रसाद तरे कुल लोगा, नानक लिप्त ना मायो। कानड़ा महला पंजवा, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम को बने आई, जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, एह सुमत साधु ते पाई। सब मैं रव रहया प्रभ एकै, पेख पेख नानक बिकसाई। कानड़ा महला पंजवा, ठाकर जियो तुहारो परना, मान महत तुम्हारे ऊपर, तुमरी ओढ़ तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय लै तरना, तुमरो बल तुम संग सोहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल ता पौजल तरना। अपैदान नाम हर पायो, सिर डार्यो नानक संत चरना। कानड़ा महला पंजवा, साध सरन चरण चित लाया, सुपन की बात सुनी पेकी सुपना, नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहाओ। नह त्रिपतानो राजो बंतान, बहुर बहुर फिरताया, सुख पाया तृष्णा सब।

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुरमेरो कानड़ा महला पंजवा बिखै दल संतन तुमरै गाहयो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन भेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सह समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिन सह मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत खत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेड़त नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मनै सुख पाई है साजना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रभुदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रपरसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोख सगल मल हरसन पावन तहावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अबनासी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जने अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरी आ रहाओ अहं मत आन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम लाग गरिया अनित व्यवहार आचार विदहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार भूम पागे बिखैरा स्यो आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोयत खोयत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराध गुर सतगुर चरनी लाग हर पावो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविध खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभा पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगते उदारण नाम प्रे तेरे नवनिद नाम निदान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत ले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांचो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोरै
किछ संग ना चालै लाख करोरै, प्रभ जी को नाम अंत पकरोरै, मनसा मान एक।

कर कृपा मिले परमानंदा प्रमिले स्वामी सुखैगामी इच्छा इच्छ मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बहुत दुख न रुनिया ले कंठ लाए सुख दे कहाए।

तुम जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प्या रापो कोई मिले प्रभु मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभु तुमरे, जन नानक के प्रभु समर्थ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हम मैं मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

हर हर प्रभ हर जप्यो जगन नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण महला चौथा। हमरी चितवनी हर प्रभ जान है, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहया एक तल नहीं मानना है रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अच्युत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है, हर सेवा ते काल जोहे ना सकै, चरणी आए पवे हर जन। जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान, ता कौ कोई अपर ना सकै, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान, ता ते जन कौ आनंद भया है, रिद्ध सुध मिले।

रस रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन करत रीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुर पारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। स्वर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पसम करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साध जनी के, जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों करता अंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलै मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। राम राम राम राम रवि।

साधु साधु साजन के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम होवो सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागणहारा सुख सागरे अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझे अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी मिले।

हर हर आप धरियो हर जन में जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुबदे बह दे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा उपजंपो पाए न पाइए कतहूं। गुरपूरै हर प्रभ लभ रहाओ। राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसबा। लोह मनूर कंचन मिल संगत हर उर तारियो गुर हरबा। हौं मैं बिखिया नित लोभ लुभाने पुत कलत मोहे लुभबा। तिन पग संतन सेवे कभू ते मनमुख पूंबर परबा। तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन बा। ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। शका एक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मानो हर हर नाम निधान। हर दरगह पावे मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान। सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान। खिन खोवे पाप कोटान मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवां विभास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते हर सोग ते रहे निरारा। ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जलथन मीत सो हर सेवो नीता नीत। तहां सखाई जै कोई ना होवै कोट अपराध एक खिन में तोवै। दात करे नहीं पछोतावै एका बख्स फिर बहुर ना बुलावै। किरत संजोगी पाया पाल साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवां। प्रभ की सेवा जन की सोबा काम क्रोध मिटे तसलोबा। नाम तेरा जन कै पंडार गुण गावै प्रभ दर्श प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जान पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै ना जाए अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवां। गुण गावत मन होए आनंद आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया जिस प्रसाद मोहे नहीं माया। हालत पलत जिन गुरै सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी गुर पूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव वड़े पाग पाई है हर सेव। प्रभाती महला पंजवां। सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुर्त मिटाया। हम बारक सरन प्रभ दयाल
अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरगोपाल रहाओ। ताप पाप बिनसेखिन पीतर पै कृपाल गुसाई सास सास पार ब्रह्म आराधी अपने सतगुर कै बल जाई। अगम गोचर बेअंत स्वामी ताका अंत ना पाई है लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिक सब नासे सच नाम गुरदीनी रासे प्रभ की दरगह सोभावंते सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोग सब बिनसै अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत हर के नाम स्यों लागी प्रीत कोट जन्म के गए कलेस ज्योतिष पावे सुफल होस तिस गुर कहो सदा बन जाई जिस प्रसाद हर नाम ते आई ऐसा गुर पाई वडभागी जिस मिल ते राम लिव लागी। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल कटाके अंतर जामी आठ पहरे अपनी लिव लाए जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवा कर कृपा अपने प्रभ की ए हर का नाम जपन कौ दिए आठ पहर गुण गाए गोबिंद पै बिन से उतरी सब चिंद उबरे सतगुर चरनी लाग जो गुर कहे सोई पल मीठा मन की मत त्याग रहाओ। मन तन वस्या हर प्रभ सोई कल कलेश कल कलेश किश विघन ना होई सदा सदा प्रभ जी कै संग उतरी मैल नाम कै रंग चरण कमल स्यों लागो प्यार बिन से काम क्रोध हंकार। प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर स्यों मन माना सुन सज्जन संत मीत सुहेले नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निध गाई है कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा से धनवंत से ही सच साहा हर की दरगह नाम विसाहा हर हर नाम जपो मन मीत गुरपूरा पाईए वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाओ। पाया लाभ वजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुरप्रसादी हर रंग मान। बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उत्तर सपार। प्रभाती महला पंजवा गुरपूरा पूरी तां की कला गुर का शब्द सदा सद अटला गुर की बाणी जिस मन वसै दुख दर्द सब तां का नसै हर रंग राता मन राम गुण गावै मुक्तो साधु तुरी नावै रहाओ। गुरप्रसादी उतरे पार पौ परम बिन से बेकार मन तन अंतर बसे गुर चरना निरपै साध परे हर सरना आनंद सहज रसूक नेरे दुश्मन दुख ना आवै नेरे गुरपूरै अपने कर राखे हर नाम जपत किलबिख सब लाथे संत साजन सिख पए सुहेले गुरपूरै प्रभ स्यों लै मेले जन्म मरण दुख पहा काटिया कहो नानक गुर पड़दा ढाकिया। प्रभाती महला पंजवा सतगुर पूरै नाम दिया आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कार्ज सगला रास्थिया रहाओ। चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द परम बिन से झूठे नित उठ गावो प्रभ की बाणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी घर बाहर प्रभ सबनी थाई संग सहाई जय हो जाई। दोय कर जोड़ करी अरदास सदा जपे नानक गुणतास। प्रभाती महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ सूड़ सुजान गुरपूरा पाईए वडभागी दर्शन कौ जाइए कुर्बान रहाओ। किलबिख मेटे शब्द संतोख नाम आराधन होवा जोग सा संग हुआ प्रगास चरण कमल मन माए निवास जिन किया तिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ
ਜਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੇ ਆਚਾਰ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵੇਂ, ਲਖ 84 ਜੋਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਈਹਾਂ ਉਹਾਂ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰੇ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਧਰਿਆ ਹਾਥ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਦਾਸ। ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਪੇਖੈ ਭਰਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਉਦਰਸ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਨੇ ਰਹਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ। ਬਿਰਸ ਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਚੀਤ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਕੀਨਾ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਇਆ ਰਹਾਓ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਮਨ ਬੂਠੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂਠੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ

सर्वसिद्ध कल्याण पूर्ण होए सगल काम, हर को नाम जपिए नीत, काम क्रोध अहंकार बिरसै लगै कै प्रीत रहाओ। नाम लागै दुख पागै सरन पालन जोग, सदगुर पेटै जमना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याय हर हर तजो मन के परम, साध संगत हर मिले जिसे पूर्ण कर्म। जन्म जन्म बिखाद बिन से राख लीने आप, मात पिता मीत भाई जन नानक हर हर जाप। प्रभाती महला पंजवां विभास पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम राम राम राम जाप, कल कलेस लो मोह बिरस जाए अहंताप रहाओ। आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित जाहे पाप। नानक बार को कछु ना लाग जाने, राखण को प्रमाई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल सरन टेक, ऊच मूच बेअंत ठाकर सर्व ऊपर तुही एक रहाओ। प्राण आधार दुख बिदार, दैन हार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखन हार मन आराध प्रभु मेक। संत रेण करो मज्जन, नानक पावै सुख अनेक। प्रभाती अष्टपदियां महला पहला विवास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा बौरी मन बौराया, झूठा लालच जन्म गवाया। लपट रही फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दरड़ाया। ना मन मरै ना माया मरै, जिन किश किया सोई जाने। शब्द विचार पौ सागर तरै रहाओ। माया संच राजे हंकारी, माया साथ न चले प्यारी। माया ममता है बहुरंगी, बिन्ना मैं को साथ न संगी। जो मन देखे पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा। जैसा कर्म तैसी लिव लावे, सतगुर पूछ सहज कर पावे। राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए। सतगुर पेटे सोजी पाए, सच्चे नाम रहे लिवलाए। सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे। निकरवा सिमर पद पावे, तांदर सच्चे सोभा पावे। गुर सेवा बिन भगत ना होई, अनेक जतन करे जे कोई। हमें मेरा शब्दे खोई, निर्मल नाम वसे मन सोई। इस जग में शब्द करनी है सार, बिन शब्द है होर मोह गुबार। शब्दे नाम रखे और तार, शब्दे गत मत मुख द्वार। अवर नाही कर देखण हारो, साचा आप अनूपया पारो। राम नाम उत्तम गत होई, नन खोज लहे जन कोई। प्रभाती महला पहला, माया मोहे सगल जग छाया। कामन दे काम लोबाया, सुत कंचन संहेत वधाया। सब किछ अपना इकराम पराया, ऐसा जाप जपो जप माली। दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निदान तेरा अंत ना पाया, साज शब्द तुझ माहे समाया। आवा गौण तुझ आपरचाया, सही भगत जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, बिन सतगुर भेटे कोई न जानी। सगल सरोवर जो समाणी, आनंद रूप विटों कुरबाणी। पाओ भगत गुरमति पाए, हम मैं विचों शब्द जलाए। तावत रखे ठाकर हाए, सच्चा नाम मन वसाए। बिसम बिनोद रहे प्रमादी, गुरमत मान्या एक लिव लागी।

निवली कर्म भयंगम पाठी रेचक पूरक कुंभ कर बिन सतगुर के सोजी नाही परमे पूला बूड मर अंधा परया पर परत होवे अंतर की मल कदे नाल है ना बिना फोकट सब कर्मा ज्यो बाजी गर परम पुल खट कर्म नाम निरंजन सोई तू गुण सागर अव गुण मोही रहाओ माया तंदा तावणी दुर्मतकार बेकार मूर्ख आप गणाएंदा बूझ न सकै कार मनसा माया मोहनी मनमुख बोल खुवार मज्जन झूठा चंडाल का फोकट चार सिंगार झूठी मन की मत है करनी बाद विवाद झूठे विच अहंकरण है खसम ना पावे साध बिन नामे होर कमावना फिका आवे साध दुष्टि सभा विगुची है बिखवाती जीवन बाद ए परमपूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुखोई बिन सतगुर मुक्त कने ना पाई आवे जाहे मरे मर जाई एहो शरीर है त्रैगुण धात इसनो व्यापै सोग संताप सो सेवहो जिसमाई ना बाप विचों चूकै तिसना आर्याप जै जै देखा तै तै सोई बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई हिरदै सच है करनी सार होर सब पाखंड पूज खुवार दुबदा चूकै ता शब्द पछाण कर बाहर एको कर जान एका मत शब्द है सार विच दुबदा मत है पवै शार करनी कीर्त गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवत मर जान नानक नदरी नदर पछाण प्रभाती महला पहला दखनी गौतम तपा अहल्या स्त्री तिस देख इंद्र लोबाया सहस शरीर चहन पग हुए तामन पछो ताया कोई जान न पूले पाई सो पूले जिसया पुलाए बुझे जिसे बुझाई रहाओ तिन हरिचंद पृथ्वी पत राजा कागद कीम ना पाई अवगुण जाने ता पुन करे क्यों क्यों ने खास बिकाई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाना क्यों पयाल जाए क्यों शलिया जेबल रूप पछाना राजा जन्मे जादे मती बर्ज प्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारे काए कीर्तना चले चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाणा बोली पाए सुबाई जो किश वरतै तुदै सलाही सब तेरी वड़ियाई गुरमुख लिप तो लेप कदे ना लागे सदा रह सरनाई मनमुख मुख दिया गया चेतै नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचिए हर अवमान न जाई जियो अवमाने पै पचिए भुलन विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुरप्रसाद या कुल्लै प्रभाती महला पहला आखण सुनना नाम आधार तंदा छुट गया बेकार ज्यो मनमुख दूजे पत खोई बिन नावे मैं अवर ना कोई सुन मन अंधे मूर्ख गवार आवत जात लाज नहीं लागे बिन गुर बूढ़े बारो बार रहाओ इस मन माया मोहे बिनास तोरो हुक्म लिखिया ता कहिए कास गुरमुख विरला चीने कोई ना बेहूना मुक्त ना होई प्रम प्रम डोले लख चौरासी बिन गुर बूझे जमकी फासी एह मनुआ खिरखनी उपयाल गुरमुख छूटे नाम समाल आपे सदे ढिल ना होए शब्द मरै सहला।

प्रभाती बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की व्यर्था मन ही जाने कह बूझ लिया गै कहिए, अंतर जामी राम रवाई मैं डर कैसे चाहिए। बेदियले गोपाल गोसाई मेरा प्रभ रवैया सर्वे ठाई रहाओ। मन है हाट मन है पाट मन है पासारी, मन है बस है नाना पेदी परमत है संसारी। गुर कै शब्द हो मन राता दुबदा सह समाणी, सबो हुक्म हुक्म है आपे निरपो समत विचारी। जो जन जान भजै पुरखोत्म ताची अवगत बाणी, नामा कह जग जीवन पाया हृदय लख बिडाणी। प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताँ का अंत ना जानिया, सर्ब निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बावन बिखू बाने बिखे बासते सुख लागला, सर्बे आद परमलाद काहट चंदन पहले। तुमचे पारस हमचे लोहा संगे कंचन पहला, तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला। प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया। जी की जोत न जाने कोई, तै मैं किया सो मालूम होई रहाओ। ज्यों प्रगासिया माटी कुंभे ओ, आप ही करता बीठल दे ओ। जी का बंधन कर्म ब्यापै, जो किश किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ इहो जियो चितवै सो लह, अमर होए सद आकुल रह। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती हृदयंतर कर तलकाती, ठग दिष्ट बगा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद च रामं क्रूर दिष्ट रता निस्बादंग रहाओ। नित प्रत इशनान शरीरं दोय धोती कर्म मुख खीरं, हृदय श्री संध्यानी पर दर्भ हरन की बानी। सिल पूजसो चक्र गणेशं निस जागत निस जागस भगत परवेशं, पग नाचस चित आकर्मं एलम पट नाच धर्मं। मृग आसन तुलसी माला कर उज्जल तिलक कपाला, हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं। जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नावा, राम सिमरो राम सिमरो एह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान, बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिनस जह है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा, राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ। सगल परम डार देहे गोविंद को नाम लेहे, अंत बार संग तेरा यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार, नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा, रे मन कौन गत होए है तेरी,
ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਤਉ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਾਨ ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਅਤ ਲੁਭਾਨ ਮਤ ਨਾਨ ਫੇਰੀ ਰਹਾਉ ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨੈ ਨਿਮਖ ਕੀਨ ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ ਪਗਹੁ ਪਰੀ ਬੇਰੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ ਸਿਮਰਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਰੀ ਜੈ ਜੈ ਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ ਨਿਸਦਿਨ ਸੁਣ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨੈ ਰੇ ਅਜਾਨ ਕਾਲ ਤਉ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹਾਂ ਜਹਿ ਭਾਜ ਰੇ ਰਹਾਓ ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨ

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते। सहनशील संतंग सम मित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान भंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन। गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन। सैना साध समूह सूरज तंग सन्ना हम तन निमृता आवदे गुण गोविंद रमणं ओट गुर शब्द कर चरमण। आरूढ़ ते अश्वरथ नागे बुजंते प्रमार गए विचरते निर्भयं सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन। जितते विश्व संसार नानक वस्यं क्रोध पै तस्कर। मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटाम्ब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम। नच विद्या निदान निगमं नच गुणग नाम कीर्तन। नच राग रतन कंठं नह चंचल चतर चतर। भाग उद्यम लभद्यंग माया नानक सा संग खल पंडित। कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी। गुरमंत्र ही नस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन। कुकरै सुकरै गर्भ दै काकै सर्पनै तुल खलै चरणार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण। कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजन। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर। नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बंता बिलास। नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतर चंचल। दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लभद्यंग सा संग कृपा प्रभं। जत कत तत दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक सर्वत्र रमण गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्यते। बिखिया पयंत अमृतं दृष्टा सखा स्वजन। दुखं पयंत सुखियं पै पी पंत निर्भय। थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुरै। सर्वशील ममंगशीलं सर्व पावन मम पावन। सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्यते। नह शीतलं चंद्र देव नह शीतलं बामन चंदन। नह शीतलं शीत रुतेण नानक शीतलं सास्वजन। मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण। ज्ञानं सम दुख सुखं युक्त निर्मल निर्वैरण। दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित। उपदेशं सम्मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी। पर निंदा न स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेण कै। खट लखन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन। अजा पोगंत कंद मूलं बसंते समीप केहर। तत्रगते संसार नानक सो घरखं व्यापते। छलं शद्रं कोट बेगनं अपराधं किल बखमलं। परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापतं। मृत्यो जन्म प्रमंत नरक अनक उपावं न सिद्ध्यते। निर्मलं साध संग है जपंत नानक गोपाल नामं। रमंत गुण गोविंद नित प्रत।
तरन सरन स्वामी रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रपूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आले है, गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगमंग महादुख सर्व सुखण है, दुर्वचन भेद परमंग साकत फसनंत सुरजन है, अस्थतंग सोगहरखंग पै खीणंत निर्भव पै अटवियंग महानगर वासंग धर्म लखण प्रमया, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, हे अजित सूर संग्रामं अत बल ना बो मर्दन, गण गंधर्व देव मानुख्यं पशपंखी बेमोहन, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर, हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी प्रमावण, चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तपसील विदारण, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण, तव पै विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण, हे काल मूल क्रोधं कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवं वस्यं क्रोत निरत्यं क्रोत जथा मरकट, अनक शासन ताड़ंत जमदूत तव संगे अदमं नर, दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत, हे लोबा लंपट संग सिर मोर अनक लहरी कलोलते, तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते, नच मित्रंग नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया, अकरण क्रोत अखाद खाद्यंग असाजिंग साज समझिया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर है, हे जन्म मरण मूलं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रंग दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख वो बहुगण परम प्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगण, वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे, हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरो, हे संसार ताप हरण करना मैं सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल दीना नाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय समरंत नानक राम दामोदर माधव, चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन साध संगेन तरणं, नानक महासागर पैदुत्तर सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं, हस्त काया रख्या परमेश्वर है, आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर है, सर्व रख्या गुरदयाल पै दुख विनाशन, भगत वछला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुत, जैन कला तारियो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं, जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर तारणं, जैन कला मात गर्भ प्रतिपालं नैश जंत जठर रोगण, तेन कला अस्थंबं सरोवरं नानक नैश जंत तरंग तोयण, गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन, लब्धं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन, मस्कं पगनंत शैलं कर्दमं तरंत पपीलक, सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंधक, साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे, तिलकहीणं जथा विप्रा अमरहीणं जथा राजन, आवदहीणं जथा सूरा नानक धर्महीणं तथा वैष्णव, ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना स्यामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं, नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद, बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वडभागी है, उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खरै, बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर, हीत मोह पै परम परमणंग अहू फांस दीखण कठन, पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंगन,
ਪਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਉਧਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਸਗਲਿਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਸਿਆਮਲੰਗ ਮਦਰ ਮਾਨੁਖ ਅੰਗ ਹਿਰਦਿਅੰਗ ਭੂਮ ਵੈਰਣ ਹੈ ਨਿਵੰਤ ਹੋਵੰਤ ਮਿਥਿਆ ਚੇਤਨੰ ਸਮੰਤ ਸਵਜਨ ਹੈ ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇਸ਼ ਜੰਤ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ ਹਰਚੰਤ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਵਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ ਪ੍ਰਮੰਤ ਪ੍ਰਮੰਤ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਮਯ ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਯੰ ਸਤ ਹਤੰਗ ਪਰਮ ਬਾਦੰਗ ਅਵਰਤ ਇਥੈ ਸੁਧ ਅਛਰਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰ ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤ ਕਾਰਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹਿ ਭਜੰਤ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮਨ ਹੇ ਪਪੀਲ ਕਾ ਗ੍ਰਹਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਯੰਗ ਧਨੇ ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮੈ ਤ੍ਰਿਣੰਗ ਤਾ ਮੇਰੰਗ ਸਹਿਕੰਗ ਤਾ ਹਰਿਯੰ ਬੂਡੰਗ ਤਾ ਤਰਿਯੰ ਊਣੰਗ ਤਾ ਭਰਿਯੰ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰਗ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਯਾਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੰਗ ਉਦਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਰਤੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲੈ ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਨੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕੈ ਲਾਉ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਿਪਤ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਾਸੁ ਕਰੈ ਮਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਦਰਣੰ ਪੈ ਦੁਤਰੈ ਅਨੇਕ ਪਾਤਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨਾ ਸੰਸਿਐ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਗਰ ਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ ਪਰਮਾਣੋ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣ ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿਧਿਆ ਤੇ ਜਾਣੋ ਸਤ ਹੋਵੰਤੋ ਮਰਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ਕੀਰਤ ਸਾਥ ਚਲੰਥੋ ਪੜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਪਰਮੇਣ ਇਸ਼ਟ ਮਿਤਰੇਖ ਬਾਂਧਵੈ ਲਬਧਿਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੋਖਿਆ ਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਲਬਧਿਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਮੈ ਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿਮ ਬਿਰਖ ਸੇ ਚੰਦਨ ਹੈ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹਤੇ ਗਾਥਾ ਗੁੰਫ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਦਨ ਹੈ ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਾਣੇ ਪਰਹਾਰਣ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬੜ ਕਰਮਣ ਰਹੰਤਾ ਜਨਮ ਮਰਨੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪੱਤਰ ਪੁਰ ਜੇਣ ਝੜੀਅੰ ਨਹਿ ਜੜੀਅੰ ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤ ਜੋਨ ਬਸਰੋ ਰਹਿਣੀ ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਬੰਤੰ ਬੜ ਭਾਗਣ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੈ ਵਿਆਪਣ ਗਾਥਾ ਗੂੜਿਆ ਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਬਿਰਲਾ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮੈ ਸੁਮੰਤਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨੰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣ ਜੇਣ ਮੱਧ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਲਬਧਿਅੰਗ ਬਣ ਭਾਗਣ ਹਰ ਲਬਧੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤੋ ਬਿਦਾਰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੱਤੋ ਜਾਂ ਕਾ ਅਸਥਲ ਤੋਲ ਅਮਿੱਤੋ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀ ਸੰਗ ਕਿੱਤੋ ਅਬਜ ਸੰਗ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁੱਤਰ ਸਿਮਰਤਾ ਬਿਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰਣ
प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण। मरणं बिसरणं गोविंद जीवनं हर नाम त्यावण लबणं साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण। दसन बिहून पुयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं व्याध्योपण संतं नानक लब्ध कर्मण। जाथ कथ रमणं सरणं सर्वत्र जियण तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन। चरणार बिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यं परा पूर्वण। शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेण उदरण संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते। वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुल समूह सगले उदारं वडपागी नानक को तारं। सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहन लब्ध्यं साध संगेण नानक वडपागी पेटंत दर्शन। सर्व दोख परं त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण। होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्म जानो नानक प्रीत कारण। सुखैण बैन रत्नं रचनं कसुंबरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन। फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है हर हा मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सब है के साजया सोले किए सिंगार के अंजन पाजया। जे करे आवे कंत ता सब किश पाई है हर हा कंत बाज सिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसया कंत सावड़ पागणे तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागणे। हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जां कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया। आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पै दयाल ता पूरा पाईया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तरे हो संसार सतगुरु तराया। मिटया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया। मेरा हाथ पद्म आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना। बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नवनिद बसै जिस सदा कर। परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कत ढाकी। हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई। ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती। खोजत फिरो बदेश पियो कत पाईऐ हर हां जे मस्तक होवै भाग ता दर्श समाईऐ। डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहिया बदो पुरख बिधातै ता तू सोहिया। वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां
ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹੇ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਚਾਤਰਕ ਚਿਤ ਸੋ ਚਿਤ ਸੋ ਸਾਜਨ ਚਾਹੀਐ, ਜੇ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕੋ ਵਾਹੀਐ। ਬਨ ਬਨ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣੇ, ਹਰ ਹਾਂ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਣੇ। ਮਿਤ ਕਾ ਚੇਤਾ ਨੂੰ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਗਾਹਕ ਗੁਨੀਆ ਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਐ। ਚਿਤੈ ਚਿਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੈ ਰੰਗ ਘਨਾ, ਹਰ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰੈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੈ ਸਚ ਤਨਾ। ਸੁਪਨੈ ਉਬੀ ਪਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਰਾਇਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪਾਈਐ। ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨਹੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਕਾਲਿਆ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੱਟੀਐ। ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾਮਦ ਗੁੰਫਿਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਜਾਏ ਬਿਸਰ ਤੇ ਸੁੰਫਿਆ। ਹੈ ਕੁ ਐਸਾ ਮੀਤ ਜੇ ਤੋਰੈ ਬਿਖਮ ਗਾਂਠ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਧਰਨਾਥ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲੇ ਸਾਂਠ। ਤਾਵੋ ਦਸਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਣੇ, ਪੰਚ ਸਤਾਵੈ ਦੂਤ ਕਮਨ ਬਿਦ ਮਾਰਣੇ। ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਕਹਾਤ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਖੁੱਟਈ, ਖਾਵੋ ਪੁੰਚੋ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਸਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਅਰਾਧ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸਗਲੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਾ। ਜੀ

देखो काहे सच मान नहीं, जिसकी पूजै औद तिसै कौन राखई, वैदक अनप्यो पाव कहां लो पाखई। एको चेत गवार काज तेरे आवई, हर हां बिन्ना मैं तनशार बिरथा सब जावई। औखद नामे अपार अमोलक पीजई, मिल मिल खावे संत सगल कौ दीजई। जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावने, हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावणे। वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरिया,

बाद समन जाओ इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जानई मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्ज्यो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सबको कह बुरो न माने कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत।

कबीर चंदन का बिरवा पला, बेड़े ओ टाक पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया, इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिरे ओ कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली, पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर साकत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बिलोया तिन खाया अवर बिलो बनहार। कबीर माया चोरटी मुसमुस लावे हाट, एक कबीरा नाम सहजन कीनी बारे बाट। कबीर सुख ना एह जोग करे जो बहुते मीत, जो चित राखे एक स्यों ते सुख पावे नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल। कबीर ता स्यों प्रीत कर जा को ठाकर राम, पंडित राजे पूपती आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर पावे कर रमुडाए। कबीर जा काजल की कोठरी, अंध परे तस्माहे, हम बलिहारी तिन कौ पैस जो निक सजाहे। कबीर यहो तन जाएगा सको ता लेहो बहोर, नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। कबीर यहो तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कह संगत कर साध की कह हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पीना जानिया कोए, ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर मानस जन्म दुलंब है होए न बारे बार, ज्यो बन फल पाके पोए ग्रह बौर न लागे डार। कबीरा तुही कबीर तू तेरो नाओ कबीर, आराम रतन तब पाई है जो पहले तजै शरीर। कबीर चंख ना चंखी है तुमरो कहो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे बेट ना साके कोए। कबीर कसौटी राम की झूठा टके ना कोए, राम कसौटी सोस है जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल पैरे कापरे पान सुपारी खाहे, एक सहर के नाम बिन बांधे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेंक हजार, हरुए हरुए तर गए डूबे जन सरपार। कबीर हार्ड जरे

कबीर बैसनो की कूकर भली सागत की बुरी माए ओह नित सुने हर नाम जस पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला।

राम स्नेही तो मिले दोनों वर्ण गवाए। कबीर हर दीपी रतन हर है चून चहन न रहाए। बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वर्ण कुल जाए। कबीर

हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊच पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पाला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओढ़ हीरा किसका बापरा पुज नारतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबै को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक न लाग गई जो बस बजाइए फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजे हर जन की पनिहार। कबीर निर

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हुके ना है, जिन एह रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ, कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है, जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ, फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारखे आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर थातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहन क्यों करो, सब कर देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बुझो नहीं, घट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ, चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के, ना खल पई ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है, बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे, सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सर अतुल।

पार पर आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार ओपत पर लो एक है निमख तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जिह क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहो सर मैं आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जिह क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एकै सूत है जहानं कौन उपमा देओ बड़े ते बड़ानं जानै कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जिह क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत इक तिल नहीं पासी जा कहो होहे कृपाल सुजन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुर नानक जन परसयो से जन मरण दो थे रहो सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेहे रसन चाखेओ तेहे जन तृप्त आगाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सतसंग ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पै धरियो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आपिया पुल ना पुलो रतन नाम अपार कीम न हो पवे अमलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन हूं पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते बौड़ फिर जोन ना आए कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकी मना परिए ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत ना पाए अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसियो ते इत्युत सदा मुक्ते प्रभ दाता दातार परयो जाच के कसरना मिले दान संतरेन जेहे लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावै देहो दर्श मन चाओ भगत्यो मन ठहरावै बलियो चिराग अंधियार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा एको वंकार सतगुर प्रसाद काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील कुग्यानी तावत परमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मदमाता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पार तान पारे अपवाद नार निंदा यह मिठी जी माए हितानी बल बंच शब कर त्यो पावा पेक्त सुंत प्रभ अंतर जामी सील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण समरथ श्री तार राख लेहो नानक के स्वामी कीर्त करण शरण मन मोहन जोहन पाप बिदारण कहो हर तारन तरन समरथ सवै बिद कुलै समूह उदाहरण सौ चित चेत अचेत जान सत संगत
ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਤਾਂ ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਬਰਦਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਚੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮਤ ਕੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੋਹ ਬਡਿਓ ਸੋ ਕਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਮਯੰਕਰ ਬੀਤ ਤਿਉਧ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮਿਰਤ ਮਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਪੁਖਤ ਪੂਖ ਪੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਨਕ।

वर्ष एक हों फिर ओ किने नो पर चौलायो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो पहर समाज सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंत न आवै रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूरज ने की आसा सतगुर से परम पद पायो अब नासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जा को फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अनपौ उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील सनहु फुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो निव निद नव निद नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो बनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तैं जगतो धारण पायो
जगतो उदाहरण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर तै शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सील सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम्हू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख

ਜੀਓ ਜੀਅਨ ਸਵਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਬਖਿਆਤਾ ਅਹਿਨਿਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੈ ਜੀਓ ਜਾਂ ਕਉ ਦੇਖਤ ਦਿਰਦਿਰ ਜਾਵੈ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮਹਿਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ ਫੁਨ ਜਾਣੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਥ ਕਥਨ ਹਾਰ ਤੁਜੈ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਭਰਮ ਪੂਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਗਾਰ ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਈ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਦ ਵਿਚਾਰ ਅਹਿਨਿਸ ਜਪ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਉ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਿਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਣਤ ਦੂਜਾ ਨਾਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋਆ ਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਰਿਧ ਧਰ ਨਲ ਕਉ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਨਲ ਕਉ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾਸ ਸਿਮਰਤ ਅਨ ਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਦਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ਸਭ ਵਿਦਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਡ ਜਿਸੈ ਧਾਰਿਓ ਤਰਤ ਅਰ ਵਿਓਮ ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ ਸਤ ਸ੍ਰਿਖ ਨਿਸ ਸੂਰ ਦਿਨ ਸੈਲ ਤਰੂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦੀਓ ਸੁਰ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਧਾਰਿਓ ਤ੍ਰਿ ਪਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਪਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ੍ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਤਨੈ ਕਿਆ ਗਰਵ ਦਿਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੈ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ ਅਗਨ ਕੱਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾਹੋ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ ਸੁਨਤ ਸਮਾਦ ਸਬਦ ਜਿਸ ਕੇ ਰਹੇ ਫੁਨ ਦੁਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰਉ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤਿਹ ਨੇਰੇ ਪੂਰਉ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪੀ ਉਸ ਪਿਵੰਨ ਕੀ ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕਉ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਓ ਜੋ ਦਹੰਗ ਦਿਸਤਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਨਾਇਓ ਗਯੋ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ
समरथ गुरु सिर हथ तरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पन दास सुवास जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाग सफारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए राखो दास पाठ की लाज झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया शब्द हर हर जपै नाम नाम निद अपै रसन अहनस रसै सत कर जानिया फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख है ते आई है अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानिया बचन गुर रिद तरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानिया जाओ ता सब सुख इत्योत तुम बंछवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मंत्रो त्यान अहनिस करो बचन गुर दै तर फुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरपौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्द मन भ्रम तजो नाम गुरमुखो भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईऐ उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवल आई है फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत प्रवाह छुटकंत सा द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्वाण निदान हर उर तरह गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव सेव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरह ते तीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर कर तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरह नारदाद सनकाद हर गुरमुख है तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे। श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुक्त ना होए गुरु नानक निकट बसै बनवारी तन लहना थाप जोत जगतारी लहना पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कहो दिया तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियंग बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कईयं प्रतख देहे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी
श्री रामदास तारण तरन। जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुरदर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते। रग बंस तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंश जा की सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरणं। संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अव लोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरण। प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया, जस जन कै एक पड़े सुने गावे, प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरणं। जिनो बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं, जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो। देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सरबर कौ काहे जियो। सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाक्ष हरयो, नख बिदार जियो। संख चक्र गदा पद्म आप आप कियो शदम, अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। पीत बसन कुन दसन प्रया सहत कंठ माल, मुक्त सीस मोर पंख चाहे जियो। बेवजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम, खेल किया अपने ओ शाहे जियो। अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रया समाए, सुतै सिद रूप तरयो साहन कैसा है जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरुख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो, बलै शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर, नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल अरविंद जियो। राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण, सरभूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो। जर्म कर्म मछ कछ हो ब्राह,
जमना कै कूल खेल खेल्यो जन गिंद जियो, नाम सारहिए तार तज विकार मन ग्यंद, सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, गुर कहया मान निज निदान, सच जान मंत्र एह निस्बासर होए कल्याण, लह परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन से

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जो ने उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादक रुद्रादक, काल का काल निरंजन जचना। गुरप्रसाद पाई है परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद, आद जिस कोए न

पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै, श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को, फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अगपुंज तरंग निवारण को।

निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर अथाह अत बड सुबर, सदा सभ्य दुरत नागर, संत मराल करै कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर, कलयुग दुरत दूर कर बे कौ, दर्शन गुरु सगल सुख सागर, जा को मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग, कब होक को पावे आत्म प्रगास कौ, वेद बाणी सहत बरंच जस गावे जा को, शिव मुन गह नात जात कबलास कौ, जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ, सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ, नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिहो लोक प्रगासे, देख दर्श पटक भ्रम पजत दुख परहर सुख सहज बिगासे, सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे, विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास, तार्यो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद्ध अर सिद्ध न छोड़े साथ, दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ, ताहे कहां परवाह काहूं की, जा कै बसीस धरयो गुर हथ, तीन पवन पर पूर रहो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही हो पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खो जंत फिरे, अब नासिया चाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे, करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जीव मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तैं हर परम पद पायो, सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रस ओहियो, गुर अमरदास करतार कियो, वस वाहो वाहो कर त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तैं हर परम पद पायो, नारद त्रू प्रहलाद सुदामा, पुब भगत हर के जुगण, अमरीक जय देव त्रिलोचन, नामा अवर कबीर पण, तिन को अवतार पयो कल पिंतर, जस जगत्र पर छायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तैं हर परम पद पायो, मनसा कर स्मरंत तुझै नर, काम क्रोध मिट्यो जो तिन, बाचा कर स्मरंत तुझै तिन, दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण, कर्म कर तो दर्श परस पारस, सरबल भट जस गायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तैं हर परम पद पायो, जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावै, जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावै, सोई रामदास गुर बल पाण, मिल संगत तन तन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाई है, सो सतगुर सिमरो न रो, जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड्यो पास, ताते गौ हर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नास, कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास, जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास, जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निस्बासर हर चरण निवास, ताते संगत सगन पाय।

मानै तुमलि अगर प्रगट सुवास। ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन, नाम लैत उपजो जो प्रगास। जेह पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जाना, कीनी भगत प्रेम लिव लाई। ताते अंगद अंग संग पयो सायर, तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कश कही ना जाई। सोडी सिरिट सगल तारन कहो, अब गुरु रामदास कहो मिली बढ़ाई। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससर सुइया किव करी निवणना जाए थणी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पी टहदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थणी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैणिया पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहो मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीना कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीना बिख्यान स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर।

सदा बस्त तुम साथ, तन तन जे तो कौ दियो ता स्यो नेहो नाकीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन, तन तन संपै

काट काट में हरजू बस संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने देवतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कह नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। पै काहू कौ देत नह नह पै मान त्यान कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास कहो नानक सुन रे मना तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी करता राम पशान कहो नानक वह मुक्त नर एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजहो करण सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक अपन तरै और न लेत उधार। जो सुपना यार पेखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत कोटन मैं नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद बुदा उपजै बिन सह नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई मद माया कै अंद कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। माया कारण ता वही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान।

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहो ठगौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों।

गर्व करता है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत, जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बेदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन मैं तरै गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यों कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन जोत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर नारा।

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होते उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभे ओ साथ, कहो नानक ए बिपत मैं, टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो जा कै सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्स तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौसकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमरिया कर रावण दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिआं ते अंतर के खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसी दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिआं नाल चिराए गए गुरुद्वारिआं दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिन्हां प्यारिआं सचियारिआं दी कमाई का ध्यान तर के खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिआं अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति होई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदिआं विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा।

अहंकार, असंख जप, असंख पाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे,

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो अमूल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्यान आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद

गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंदासन बैठे देवत्या दरनाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सरे

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुझी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक

माता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड अवर ना कोई, तू जोग जोग

तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए।

लिए पत होए। ऊतम से दर ऊतम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामन रस।

प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोट दी साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान।

जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाउ। अंतर की गत जानिए गुर मिलिए शंख उतार, मोया जित कर जाइए तित जीम दया मर मार। अनहद शब्द सुहावने।

नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पैके ही लाग श्री राग महला तीजा घर ही सौदा पाई आए अंतर सब वथ होए खिन खिन नाम संभाली आए गुरमुख पावे कोए नाम निदान अखोट है।

मोह अभिमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त न पाई मन मुख फिर दीवान शब्द न चीन कथनी बदनी करे विख्या माहे समान।

मुखियां सोहागणी तिन दया पई मन आए। सतगुर वचन रतन है जो मने सो हर रस खाए। सेवड़ भागी बड़ जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए। इहो हर रस वण तिन सबत है।

गुरमत हर लिव उबरे अलिप्त रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मन्नी है।

सतगुरु स्यों चित लाया से पूरे प्रधान। जिन कौ आप दयाल होए तिन उपजय मन ज्ञान। जिन कौ मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखां।

आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपियै अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटियै लागै सहज ध्यान। मेरे मन प्रभ शरणाई पाए, हर बिंदु जाको नहीं एको नाम त्याए। रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह। कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह, चरण

नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख न मनहु विसार। रहा

तेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान नानक जपिया सच नाम हो सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वड भागी तन खात संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तहरिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाख

राजन रिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

गुर जेवड़ अवर न को दूजा थाओ ना को सुजै गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ। गुर परमेश्वर सेव्या पै भंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड जिन गुर सेव्या अपना जमदूत न लागे डंड। गुर नाल तुल न लगई खोज डिठा ब्रह्मांड नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

जिचर वस्या कंत घर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात पे अड़ै शहु सेव तू साहुरड़ै सुख वस गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगे दुख।

आधार तिसह त्याव मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन माहे त्याए, गुर के चरण मन मह त्याए, छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ। दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे, हौ तिन कै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन बसै साच हर का नाउ, सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया, हर सिमर होए उधार। जप

संसार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवां दो

वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

सभी मद सभै ते बाहर बे मोहताज बापा पिता हों जानो नाही तेरी कवन जुगता बंधन।

आए करते हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

पास सतगुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत

का नाम सास ग्रास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाई सच नाम गुणतास।

जाए, नानक गुर शरणागति मरे नहावे जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला, घर पहला अष्टपदियां। आख आख मन भावना, ज्यों ज्यों जापे वाए, जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए। आखण वाले जेतड़े सब आख रहे ले।

जाए नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी मन धन मांडी है साच धड़ी धन मांडी है कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी

खेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों तेरे दिन रहन विहाए अंक जलाओ तन जा लियो मन तन तन बल जाए अंक

जान बिन गुर कर्म न छुट सी कह सुन आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोय हर वर नार सुहावनी मैं पहावै प्रभ सोय नानक शब्द मिला बड़ा ना वे छोड़ा होए श्री राग महला पहला।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहज

फाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा वापार ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए ऐसा

क्यों थिर रहै सुहाग पाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊं।

दुख जल जाऊं, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाऊं, शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राख है उर तार, सो क्यों मन हो विसारी है सब जिया का आधार, शब्द मरे सो मर रहे।

सेवा सुख पाइये हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणिय गुर मेली गुण चार साच

सच बोल, आप तुलाए तुलसी पूरे पूरा तोल। कथने कहन न छुट्टी है, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच न पाई है बिन हर भगत प्यार। नानक नाम ना विसरै मेले गुर करतारू, श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाइये रतन विचार। मन बीजे गुर अपने पाइये सर्व प्यार, मुक्त

सोए गुर भंडारे पाइये निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिये पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संहार भव जल बिखमंडरा।

कपीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै के हे कर्म मिले सो पाई किरत पया सिर दे रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला मन मुख भुले भुलाई फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवे जाए। ज्ञान पदार्थ खोया।

कवन पता आर अखर पढ़ पढ़ फुलिये देखी बहुत अभिमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुरबिन किन समझाइये मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाइये।

जिस गुरमुख वसया सोए नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए ज्यों सुपने निस भुलिया जब लग निंद्रा होए इउं सरपन कै बस जियड़ा अंतर हो मैं दोए गुरमत होए विचारिय सुपना एहो जग लोए।

पाहि। नानक तरियै सच नाम सिर शाह पातशाह, मैं हर नाम न विसरै हर नाम रतन बेसाह। मनमुख पौजल पच मोए गुरमुख तरे अथाह, श्री राग महला पहला घर दूजा

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आन दिन भगत कर

पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चौदस जाए, जेता उड़ है दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जा पई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ, तिन्ना पास न बैसिए ओना कर ना गिराऊ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द।

भ्रम जाए। नाम पदार्थ पाई गुरमुख सहज सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए, भगत वसल हर मन वसया सहज मिलया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सा लाहिए करम प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना आप भरम पुलाए। मन मुख कर्म करह नहीं बूझ है बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इस जग मह चान।

खड दर्शन जगया, खड दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम कुलाए, सतगुर सेव है तांगत मित पाव है हर जियो मन बसाए, सच्ची बाणी स्यों चित लागै आवन जान रहाए, पंडित

जाता। प्रभ निकट वसै सबना कट अंतर गुरमुख विर लै जाता। नानक नाम मिले वडियाई गुर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा सहजै।

शब्द जीवत मराय गुरमुख भव जल तरना वड्डा भाग नाउ पाई गुरमत शब्द सुहाई आपे मन बसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई इकना मनमुख शब्द न पावे।

जियो हो सतगुर विट हो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लै रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां कौ जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया दुए कर मस्तक धार जियो।

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा। आम घटै दिन जाए, अंत काल पछतासी। अंधले जां जम पकड़ चलाया,

जित आसिर जुग जुग हो वहो हर से तीसद मान हो रलिया जन्म मरण दुख हो वहो गुर सत गुर स्वामी भेद न जान हो जित मिल हर भगत सुख।

खांडवर पांड हर सोभा होई इहुदान रलाया होर मन मुख दाज जे रख दिखा लह सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबुला हर देव हुदान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबुला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुग है जुगो

गोविंद नाम संभाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर निभ तेरे नाले, संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई ना जाए, मन चिंदे से ही फल पावे चरण कमल चित लाए, जल थल पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन वणज वा।

हर सच मन वसै निश्चल मत अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द विचार जिहवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चै सतगुरु।

तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद बखान है माया मोह सुआए दूजा पाए हर नाम विसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै जो देंदा रिजक संभाहे जमका फाहा गल हो न कटी है फिर आवे जाए मन मुख किशु न

कमाए कूड़ कुसात कमाए गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुनहु जन पाई हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम

लाए विच हो आप गवाए कह रहन सच लिव लाए सतगुर जिनी ना सेवे तिन्ना बिरथा जन्म गवाए नानक जो तिस पावै सो कर।

मुख उजले हर दरगाह पहंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंजर मह बिरहा।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया, तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अफसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया। पुंडर केस कुसम ते तौले सपत पाताल की बाणी। लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी।

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरे अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाई है, मिल सत संगत हर नाम ते आई है। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरु।

तेरा अखुट भंडारा, जिस तू देहें सो तृप्ति अगहावै, सोई भगत तुम्हारा जियो। सब को आसै तेरी बैठा, घट घट अंतर तू है बूठा।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारिया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया है संत हो। गुर अनपौ पुरख दिखारिया जियो, आपे राजन आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई। सब चूकी कूक पुकारिया जियो, जेहा डिठा मैं ते हो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया,

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मुहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावह गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइय होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजह पैरा गुरमुख हृदय जा कै हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिय गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा।

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपो मन सिमरत ठंडा थी मां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन।

खीर अगावै ज्यों निर्धन धन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहु मन पीना जियो ज्यों अंधियारै दीपक परगासा भरता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोकौ हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस हृदय बसेरा। गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावौ। प्रभु दया ते मंगल गावौ। उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोकौ साधु दिया, किल बिख काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो।

साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब बिद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है। जो

सूखम होवा अस्तुली। तू जल निद तू फेन बुद बुदा, तुद बिन अवर न पालिए जियो। तू सूत मणिए पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है। आद मध अंत प्रभ सोई, अवर न कोय दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्वाण रसिया रंगराता। अपने करतब आपे जान है, आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक भोरी नदर।

दर्शन पेखा से कर भले जिनि हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौं बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल।

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

भेटत संग साध संतन कह सदा जपौ दयाला जियो प्रभ अपना सास सास समारौ ए मत गुर प्रसाद मन ता।

सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दीए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई, सब पौ बिनसै हर हर त्याई।

हारे दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल पूर रहया मेहरबाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिनस तिस सदा त्याई जे खिन मैं सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल।

गोविंद प्रभ नानक सर्व समाहया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसह हर जन सच्चे नाम बिटहु कुर्बानो जियो सच बडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म न कह।

साथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पौ परम खोया गुरपुरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊच अपारा नौनिद नाम भरे पंडारा आद अंत मध प्रभ

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावै अन दिन नित जागी। बहां पकड़ तिस स्वामी मेलै, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय।

जी जंत सब शरण तुम हरी, आपे धर देख है कच्ची पक्की सारी। अनदिन आपे कार कराए, आपे मेल मिला बनिया, तू आपे मेल है वेख है हदूर, सब है आप रहया।

मनमुख परम भुलावणिया आपे देवै शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिले बड़ियाई आपे सुन सुन ध्यावणिया माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई हर चेत हो अंत हुए सखाई हर अगम अगोचर।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया। मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए।

जा गोविंद उज्जल उज्जल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उज्जल सदा मुख सोह है अत उज्जल नाम।

मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाय रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सिउ लिव लागी।

जय शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख होमै चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल।

गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा मह एक थान सुहाया पूरा गुर हौमै भरम चुकाया आन दिन नाम सलाहन रंग राते।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सुख है कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिनको रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया, जिसको तुम प्रभ

मंगिर माहे सोहंदिया हर पिर संग बैठड़िया तिन की सो भाक्या गणी जे साहिब मेलड़िया तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़िया।

ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थाओ हर ओट

बिन नाम है मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

सच कमाए मारन पाहे हराम मह होए हलाल ना जाए नानक गली कूड़े कूड़ो पल्ले पाए महला पहला।

आप बुझाए सोई बुझै, जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझै। कह कह कथना माया लूझै, हुक्मी सगल करे आकार। आपे जाने सर्व विचार, अखर नानक अखयो आप। लह प्रांत होवै जिस दात, पौड़ी

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वश

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवे जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वस्या मन आए, आन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरै परती।